सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए।

ब्रह्मा अवतारा, काल पाए शिवजु अवतारा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा।

कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सपर कृपा दिष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछन्न है, घट घट के पटपट की जन्न। जबद कर खरा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर खरत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूं। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब हीते रहत निरालम,

पंथ चलाए तब जगत मैं, जब तुम करो सहाय दोहरा, जे जे तुमरे ध्यान कहो, नितुड़ ध्याय है संत, अंत लहेंगे मुक्त फल, पावेंगे भगवंत दोहरा। काल पुर की देह मो, कुटक बिशन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा गिते, राव सस क्रूर जलेश दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भाखत नेता, स्वर्ग बास रघुबर करा, सगरी पुरी समेत चौ पई, जो ए कथा सुने अर गावै, दुख पाप तिह निकट न आवै, बिशन भगत की ए फल होई, आद ब्याद शब सके न कोई, सम्मत सतरह सहस पचावन, हाड़ बदी प्रथम सुख दावन, त्वा प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा।

सिमराओ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया घर नाओ निध आवे ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा दे अंदर के बोलो जी। पंजा प्यारिया चौं साहिबजादिया चालिया मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई, तेग वाही देह के अंडिठ कीता, तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान तर के बोलो जी। जिन्हां सिंघ सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए कोपरियां लुवाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, आरिया नाल चिराए गए गुरद्वारिया की सेवा ने कुरबानियां कीतियां, धर्म नहीं आ रहा सिखी केसा सवासा संग निभाई, तिना की कमाई का ध्यान धर के बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारिया का ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतावै चित आमन का सदका सर्ब सुख होवै, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तह तह रशिया रियायत, देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बल बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान, श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची, मत दा राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो, श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान, प्यारे खालसा जी नूं बख्शो इन माणियां दे मान, नताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट, सचे पिता वाहिगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज, आप जी ने पावर मेहरम बख्शिश कृपा कीती, आप जी दी हजूरी विच संध्या वेले दे सुंदर दीवान सज रहे हैं, सदवान की आरंभता विच आप जी की पित्र बाणी सोदर दे पाठ होए, गुरबाणी पाठ करद्या होया अनेक ही प्रकार दी गलतियां भुलां दी माफ़ी बख्शो, अगाह वास्ते सुध स्पष्ट बाणी पढ़न की दात बख्शनी, गुरबाणी का भाव आईया संगतां दे हिरदयां च वसा के कृतार्थ करना, आई संगत की हाजरी तिल फुल भेटा की दरकर विखे कीतियां सेवावां दर प्रवान करनियां, परिवारों सुख शांति चाढ़ी गलदातां बख्शनियां, अर्शदीप सिंह ते अमरदीप सिंह जन्मदिन की खुश अरदास बेनती करते हैं, जगमीत सिंह तंदुरुस्ती सुख शांति चढ़ती कला लिए अरदास बेनती करते हैं, बहुलप्रीत सिंह वालों शुकराना सुख शांति चढ़ती कला कार्यों की सफलता वास्ते अरदास बेनती करते हैं, परिवारों की बेनतियां गुरु अनुसार प्रवान करनियां, प्यारे खालसा पंथ की चढ़ती कला करनी, जेलां च बंद कौम के जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा भाई अमृतपाल सिंह ते होर प्यारे गुरसिखां दी रिहाई चढ़दी कला लई संगत तों अरदास बेनती है, आप जी दे बख्शियां खजानियां विच्चों कड़ाह प्रसादी देग सच के हाजिर है, तर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत वरतौण दी आग्या बख्शो, सो बेनतियां गुरमत सार प्रवान करदे हां बख्शो लाई श्री मुखवा।

राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा मेरी हरो बिपत जन करहो सुपहाई चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई।

असर साड़ी सुरती ते भी हुंदा है। असी जो वेखदे हाँ, असी जो सुनदे हाँ, असी जो बोलदे हाँ, उहदा असर साड़ा मन कबूल करदा, उहदा असर साड़ा मन कबूल करदा। असी जो बोलदे हाँ उहदा भी असर कबूल करदा। किसी ने कहा चल भाई आपां चलीए, अगों असी कह दिंदे हाँ कई वारी बहाना लाउंदे हाँ भी तू चला जा मेरा ना सिर पीड़ हुंदा, हालांकि हो नहीं रहा हुंदा, उदा ही बहाना ला लिया भी मेरा सिर दर्द है तू चला जा। वो चला जाता है, वो जाता है, एकदम सिर दर्द होना शुरू हो जाता। हालांकि पहला नहीं सी, बोलिया ही है, बहाना ही लाया सी, पर रियलिटी में उस तरह होना शुरू हो गया, क्योंकि जो असी बोलते हाँ उहदा असर भी साडी सुरत ते हुंदा ते मन ते असर हुंदा। मन कहिंदा हाँ सिर दर्द हो रहा, होण लग पिया। जो असी वेखदे हाँ उहदा असर भी साडी सुरती ते हुंदा, जो असी सुणदे हाँ उहदा असर भी साडी सुरती ते हुंदा। इस करके सुनना की है, गुरु का शब्द। नेत्री महाराज जी के बचन रह राज साहब च आपां नेता प्रति पढ़ते सुनते हैं, अंतर गुरे आराधना जिहवा जप गुरु नाओ, नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुनना गुरु नाओ। नेत्रां नाल गुरु के दर्शन करने, कन्नां नाल सतगुरु जी के शब्द नूं सुनना। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी के बचन ने, मानस जन्म अमुल है, होए अमुल साध संग पाए, अखी दोए निर्मोल का सतगुर दरस ध्यान लिवलाए, जिहवा शरवण अमुल है शब्द सुरत सुन सब सुनाए। कहिंदे जुबान भी बड़ी पवित्र है, अमोलक है, कन्न भी अमोलक ने, पर जदों कन्नां नाल गुरु का शब्द सुनीए तो होर अमोलक हो जाते हैं। तो इन्हां सरवणा नाल सतगुरु जी का शब्द सुनना। मेरे मोहन सरवणीए ना सुनाए, कहिंदे हे मेरे मोहन प्यारे, मैं अपने मेरे कन्नां नाल मैं ओह चीज़ नहीं सुनना जो साकत बोल रहे ने, क्योंकि साकतां दे बोले हुए बोल अजाई हैं, व्यर्थ हैं, मैं वह नहीं सुनने। की सुनना? गुरु का शब्द सुनना है, गुरबाणी सुननी है, कथा सुननी है, कीर्तन सुनना है। एक कन वाहिगुरु के जस न सुनने वास्ते प्राप्त होए ने, तां सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी इत्थे कह रहे ने सुन। सुनन तो बाद फिर अगला पड़ा है मन। सुन मन, मन वसाए तू। कहिंदे हे भाई तू सुन, सुनन तो बाद फिर मनना भी है। सुनन वाले करोड़ां होणगे, पर उन्हां करोड़ां विच्चों सुन के मनन वाले फिर होर घट ने। जे करोड़ां सुनदे है ते करोड़ां सुनन वालियां विच्चों अगे मनन वाले फिर विरले ने, ते फिर मनन तो बाद मन वसाए तू। कहिंदे फिर उहदा निध्यासन करना, मन च वसाउणा, यानी कि उहदी कमाई करनी। मनण वाले भी लखां करोड़ां होणगे, पर मनण तों बाद उहनां नूं कमाउण वाले उह अगे होर थोड़े ने, होर विरले ने। हुण सुणन वालियां दीआं चार कैटागरियां दसियां वी, चार तरहां दे स्रोते हुंदे आ। इक हुंदे आ उग्गू, दूजे हुंदे आ खुग्गू, तीसरे हुंदे आ सुगू, ते चौथे हुंदे आ चुगू। जिन्हां नूं ऊंगे, खूंगे, सूंगे ते चूंगे भी शब्द नाल संबोधन भी किया जाता है। चार तरह के स्रोते। पहले ने ऊंगे, कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, गुरबाणी का पाठ हो रहा, बह के सुन रहे ने, सुनद्या सुनद्या सौ गए, नींद आ गई, अख लग गई, उन्हां नूं कहिंदे ने ऊंगे, भी सुनिया सुनद्या सुनद्या सौ गए। हुण जिहड़ा सुनद्या सुनद्या सौ जाए उहनूं की पता लगे भी की सुनाया गया है, कथा विच जां कीर्तन विच जां गुरबाणी च सतगुरां ने की उपदेश दिता है। यह गुरसिखां नूं नहीं चाहिए। ऊंगे प्रकार के स्रोते सिख नहीं होने चाहिए। सिख तां सावधान होकर गुरु की गल सुने, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकागर चीत। दूसरे ने खूंगे, खूंगे किहड़े हुंदे, भी नींद आ गई सुनद्या सुनद्या, नाल होर भी संगत बैठी है,
ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਰਿਹਾ,

उपजयो सगले दुख पलायन रहाओ। जो मांगे सोई सोई पावे सेव हर के चरण रसायन। जन्म मरण दोहू ते छूटे

नौ खंड पृथ्वी फिराचर जीवाय महा उदास सरथी वाय अग्न माए अमृत प्राण कनक असव अवर भूम दान न्यौली कर्म करय बहुवासन जैन मार्ग संयम अत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तभी हो मैं मैल न जावे हर के नाम संसर कश नाहे नान गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुटाए

सगल घटा के अंतर जामी, अपनी गत में जानो आपे, आपन संग आप रवराते। तुमरी उस्त तुमते होए, नानक अवर ना जान सकोए, सर्व धर्म में श्रे

देव अष्टपति जय प्रसाद क्षत्रिय मृत खाहे तिष्ठा गुरु को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो दस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याए त्या मन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग तबर लुभावे जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जय प्रसाद तु सबको माने मुख ताको जस रसन बखाने जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दरगे भान पावे नानक पत सेती कर जावे जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलावत सराम स्नेही जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल शिदर ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके जय प्रसाद तुझको ना पहु छै मन सास सास सिमरो प्रभ उचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे हे जय प्रसाद आप भुखन पहर रिजै मन ते सिमरत क्यों आलस कीजै जय प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी जय प्रसाद बाग मिलक तनारा प्रोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई ऊठत बैठ सत से त्याई तिसे त्याए जो एक अलख है

साधक संग अगोचर मिलाए, साधक संग सदा पर फुलाए, साधक संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग है सबकी रेन, साधक संग मनोहर बैन, साधक संग ना कतुता वह, साध संग अस्तित मन पावे, साधक संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न,

बसरा सत्संग सर पर निस्वतरा साधु संग लगे बरा मीठा साधु कैसंग घट घट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी सा संगत भई हमारी साधु संग बटे सब

राष्ट्रपति कई गोट होए पुजारी, कई गोट आचार व्यवहारी, कई गोट भय तीर्थवासी, कई गोट बान प्रमेय उदासी, कई गोट वेद के स्रोते, कई गोट तपीसर होते, कई गोट आत्म ध्यान धारे, कई गोट कब का विचारे, कई गोट नवतन नाम त्यावे, नानक करते कांत न पावे, कई गोट भय अभिमानी, कई गोट अंध अज्ञानी, कई गोट कृपा न कठोर, कई गोट अभेगात मने कोर, कई गोट पर दर्भ को हिरे, कई गोट पर दुख ना करहे, कई गोट माया सरम माहे, कई गोट पर देश परमाहे, जित जित लाभो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रजना, कई गोट सिद्ध जति जोगी, कई गोट राजे रस भोगी, कई गोट पंखी सर्व पाए, कई गोट पाथर बृख निभाए, कई गोट पवन पाणी बैस अंतर, कई गोट देश भूमंडल, कई गोट शशियर सूर नक्षत्र, कई गोट देव दानव इंद्र शेर शतर, सगल समग्री अपने सूतार, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तार, कई गोट राजस्ताम सातक, कई गोट वेद पुराण सिमरतर शास्त्र, कई गोट किए रतन समुंद, कई गोट नाना प्रकार जंत,

रही विनास मंथन नाम रते करंग सदा बसे पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मै जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभु गए सतगुरबान सलोक सुखी बसै मसकीनिया निवार तरे बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंदर राज मान सो नरक पाती अवसमान जो जाने मैं जो बनवंत सोद विष्टा का जनता विस्को करमंत कहावे जन्म मरे बहजोन परमावे तन भूमगा जो करे गुमान सो मूर्खंदा अज्ञान कर कर बस का हृदय गरीबी में सावे नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे तनमंता कर कर बावे त्रिन समान का संग ना जावे बहु निष्कर मानुख पर करे आस बल भीतर था का हुए विनाश सब दे आप जाने बलवंत खिर में हो जाए बसमंत किसी ना बदे आप अहंकारी धर्म राय करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सोजन नानक दरगे परवान।

संत गए दुखन यार जा घटे संत गए दुखन जमते नहीं छुटे संत गए दुखन सुख सब जाए संत गए दुखन नरक में पाए संत गए दुखन मत होए मलीन संत गए दुखन सो बाते हीन संत के हाथे को रखे ना कोए संत गए दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग रुदक भी तरह संत गए दुखन दे मुख पवे संतन गए दुखन गाग जो नवे संतन गए दुखन सर्प जोन बाए संत गए दुखन त्रिगत जोन कर बाए संतन गए दुखन तृष्णा में जलाए संत गए दुखन सबको चलाए संत गए दुखन ते सब जाए संत गए दुखन नीच नीच आए संत दुखी का थाम को राहे नानक संत भावित ओए भिगत पाहे संत गा निंदक मात ताई संत गा निंदक खंड कन्ना बाई संत गा निंदक मात यारा

भेदकिन्नो विस्तार पर अविनाशी एकंकार नाना चलत करे घन पाए पूर्व पूर्ण सब ठाए नाना भेदकर भणत बनाई अपनी कीमत आवे भाई सब गढ़ तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान खरनाओ नाम के धारे सगरे जंद नाम के धारे खंड ब्रह्मांड नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आकाश पाताल नाम के धारे सगल आकार नाम के धारे पुरिया सब भवन नाम के संग उतरे सुन श्रवन कर कृपा सपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान करदूत सत सत जाकी बाणी सतपुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तसे सफली सत

सिमरत सास्त भेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन मंजत नानक बल पाए संगना चाल तेरे तना तू क्या लपटा मैं मूर्ख मना सुत मीत कुटम अर बनता इंते कहो तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार इंते कहो कमन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पा सारी जिंदिए तुस बजे ना बेगाना ना मिसार नानक पछताना।

अष्टपति जब अकारे काशना दृष्टिता पापन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समात बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चेहन्ना जापत तब हर सो कहो किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तमोह का सुबत ब्रह्म अपन खेला वर्तीजा नान करते हार न दूजा जब होवत प्रभु केवल तनी तबंद तबंद मुक्त कहो किसको गनी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी अब जब एक हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन आओ तार जब निर्गुण प्रभु सह सुबाहे तब शिव शगत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जो तराय तब गमन ने डर गमन कत डराय अपन चलता अब करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख यापन आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आप यह चर्जा नानक अपन रूपा भी परजा जय निर्मल पुरख प्रकपा तोता तय बिन मैल कहा हो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्माण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शाल छत्र लगत कहो की

तब गमन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला पे परवीन तब एद देव कहा गौ चीन जब अपने आप उतार है तो सगन अब सगन कहा विचार है जे अपनु चपन आप नेरा ते गौ ठाकुर गौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप जा शल अशेद अभे समाया वहां किसे ब्यापत माया आपस गवा बया देश ते गुण का नाही प्रवेश जा एक है एक एक भगवंता ते कौन अचंद किस लागे चिंता जे अपने आप अधियारा ते कौन कथे कौन सुनने हारा।

सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहत बाजै, सुन सुन अंत करे प्रभु गाजै, प्रगटे गोपाल महत के माथे, नानक उदरे तिनके साथे, शरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए, मिट गए बैर भये सब रेन, अमृत नाम सा संग लैन, सुप्रसन्न भये गुरुदेव, पूर्ण हुई सेवक की सेव, आल जंजाल बिगाड़ ते रहते, राम नाम सत रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभधारी, नानक निभी खेप हमारी, प्रभु की सतगुरु संत मीत, सावधान एकागर चीत, सुखमनी सहज गोबिंद गुरु नाम, जिस मन बसे सोत निधान, सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए।

विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके माध्य सकल देवदास सुंदर चतुर तदगा बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन के मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एवन दान जपे मन कोए सब जुग में तागी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र भेद बखाणी सकल मतान केवल हर नाम गोविंद।

प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन देह रूप रंग रेख पेख को कह ना सकत केह।

छंद जले है थले है पीत है अपेह है प्रभु है अजू है देश है अपेस है पजांग प्रयात छंद अगाधे बाधे नंदी स्वरूपे नम सर्वाने स्मस्ति निदाने नवाह तवंग नाथे नवाह तवंग प्रमाथे नवाह तवंग गंजे नवाह तवंग अपंजे नवाह तवंग अकाले नवाह तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे

में गज अंग प्रयात छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे

दयाल कृपा करे तो साई कार कराएसी, सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म बनायसी, हुक्म मने हो प्रमाण तक से खसमे का मैल पाएसी, खसमे पावे सो करे मनो चिंदे सो फल पाएसी, तादर के पैदा जायसी, तादर के पैदा।

महाराज गुरु अर्जन देव साहब जी, गुरु रामदास साहब जी हो, कृपा करो सानू भी थोड़ा नाम जप लिए, ऐसी दात बख्श दो। महाराज साडे अंदर भी नाम दी रौन चल पवे, ऐसी दात बख्श दो। ऐसी बेनती महाराज साहब जी नूं जरूर करनी कि नानक बखाणा नाम जाना है, हर नाम हर ब्रह्म। महाराज असी बखाणा है, बेनती करते हैं महाराज, असी भी जान लिए थोड़े नाम नूं, असी भी कह लिए।

अगला शब्द है कि महाराज आप जी की कृपा हुई है, जिमें घोड़ी दे मुंह च लगाम पाई होंगी है ना लोहे दी, महाराज थोड़े शब्द दी थोड़े उपदेश दी कड़ियाल साडे मुंह च पाई है तुसी। बाबा इयो ही रुक रहे हैं जिन्हां दे मुंह च कड़ियाल पई हुंदी है, जिन्हां दे महाराज जी खिच के पा दिंदे है, नहीं तां बंदे किथे कड़दे आ। मनमतियां वाले कार्ज करन तों जिन्हां ते महाराज तरस कर लैण बख्श लैण, उन्हां नूं महाराज फिर अपना लगाम पा लैंदे उन्हां दे मुख दे विच।

भी सेवा कर दे, जा वाहेगुरु दे रंग च इन्ने रंगे रहिंदे आ हर वेले कि उन्हां दी रंग च रंगे रहना ही सेवक बन के सेवा करनी है।

महाराज जी बख्शिश करते ने गुरु रामदास साहब जी कहते भाई जिन्होंने इस देह रूप घोड़ी ते चढ़ के वाहेगुरु नूं पाया है उन्हां ते वाहेगुरु ने कृपा कीती है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। जदों कृपा दी गल आंदी है सतसंग जी बख्शिश दी गल आंदी है असी बार बार ये गल कहने आ जो सच्चे पातशाह दी बाणी चो पढ़िया समझिया है असी कह दिंदे जदों साडे ते होएगी असी भी कर लांगे जप लांगे। बाबा आदम 75 साल की उम्र च गुरु रामदास साहिब महाराज जी के दर तो उन्होंने पुत्र की दात ली ते दात जो कहिंदे जे महाराज जी देणगे तो लै लांगे घरे बैठे रहिंदे सेवा ना करदे प्रीख्या ना दिंदे मिल जांदी दात। भाई मांझ ने बचन लए गुरु अर्जन देव जी तो कि महाराज जी अज तो बाद ऐसी प्रीख्या ना किसे दी लेओ जैसी मेरी लई है ते जे ओ गुरु का सिख प्रीख्या ना दिंदा पास ना हुंदा बख्शिश ना लैंदा ते फेरे बचन लै पाउंदा कदे भी ना। क्लास आउणा पैंदा है सेवा सिमरन भजन बंदगी लाहा लैणा पैंदा। महाराज जी कृपा करदे रहिंदे है एक बचन ऐसा एक महापुरशां दा बोलिया याद है साडे ते कहिंदे भाई महाराज भी उहदे ते कृपा करदे है जिहड़ा अपने आप ते खुद कृपा करदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहिंदे सब तो पहले असीं कहिंदे महाराज दी कृपा दी लोड़ है मारा कहते महाराज की कृपा तो हो जाएगी पहला अपने आप से कृपा कर ले अपनी कृपा कर ले पहला अपने आप दे उत्ते अपने मन दे उत्ते इनू सही मार्ग ते ले आ। आप बदलना नहीं चाहता अंदरों दिलों कई जाऊगा जी मन नहीं मन दा मन नहीं आन दिता इस पासे

क्यों नहीं बख्शिश होंगी सच्चे पातशाह के घर च की है जो नहीं है सब कुछ है। महाराज जी कहते अखीरली पंक्ति की व्याख्या जन नानक हर कृपा धारी देह घोड़ी चढ़ हर पाया। महाराज जी कहते गुरु रामदास साहब जी कहते जिन्हां दे उत्ते महाराज जी ने कृपा की भाई वो शरीर रूप घोड़ी दे उत्ते चढ़ के वाहिगुरु जी नूं प्राप्त कर गए। उन्होंने सारा लाहा ले लिया है जो लाहे की जरूरत सी। इनिया क बेनतियां प्रवान हुंजा भुल्लां दी खिमा महाराज साहब जी मेहरामत करन। इस तरह तकरीबन 2-3 हफ्ते आप संगतां दे दर्शन करने ने महाराज जी थोड़ा भी भला करन साडा भी भला होवे संगत का भी भला होवे ते साडे ते भी महाराज की दया की नजर होवे।

सगल समगरी तुम रह सूत्र तारी तुम ते हो सो आज्ञा का तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास

सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुरु रहा पर पूरे।

तिस रूप नरेख अदृष्ट कहो जन कह क्यों त्याई है। तिस रूप नरेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याई है। सोहर पुरख अगम है कहो कित बित पाई है। तिस रूप नरेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई है। जिसे आप जाए आप सो हर मार्ग पाइया। गुर पूरे वेखा लिया गुर सेवा पाइया। जिसे आप बजाए आप सो